करनी हरकत वही है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मेरी फेवरेट, अल्लाह मेरे फेवरेट है, मैं आशिक हूँ अल्लाह का, मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, मैं इमाम हुसैन का आशिक हूँ, हरकत नहीं छोड़नी अपनी। ये फ्रॉड, युकादिउन अल्लाह वल्लदीन आमनु, धोखा दे रहे अल्लाह को, कोशिश कर रहे हैं धोखा देने की, वमा यकदउन इल्ला अनफुसहुम, अपने अलावा किसी को धोखा नहीं दे रहे। दीन वही है जो अल्लाह की किताब में बयान हो चुका है, क्राइटेरिया वही है, स्टैंडर्ड्स वही हैं, मेरिट्स वही हैं। क्या फरमा रहा है, उतर जाओ नीचे, अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो जिसने फॉलो किया, ना कि जिसने नारे मारे, जिसने फॉलो किया, फमन तबिअ, ताबिअ तबईयत की, जिसने तबईयत की, फॉलो किया उस हिदायत को, फला खौफुन अलैहिम, छोटा सा फॉर्म, छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके बरक्स, तबईयत का बरक्स क्या है, वल्लदीन कफरू, ना माना, वकज़्ज़बू, जुटला दिया, लिफ्ट ही नहीं कराई। जुटलाने की कई शक्लें होती हैं, जुटला दिया, जैसे मैंने कहा ना, बाप आखिर में कहेगा मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच बोल रहा हूं, मुझे प्यास लगी है। तुम्हारा अमल ऐसा है कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं, मजाक करूं, मुझे प्यास लगी नहीं है। जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया और आयात को जुटला दिया, वो कौन है, उलाइका असहाबुन नार, वो असहाब आतिश, जहन्नम में रहने वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा वहां पर रहेंगे। ये सिंपल और क्लियर फार्मूला है अल्लाह की तरफ से। अब जो मर्जी बंदा कैंचियां लगाता रहे यहां पर, इधर की उधर मिलाकर और बख्शिश करवाता रहे, नहीं, जिसने अल्लाह की बात मानी है, उसी ने रसूलुल्लाह की बात मानी, उसी ने हजरत अली की बात मानी, उसी ने इमाम हसन हुसैन की बात मानी, वरना जो सिर्फ जुबान से कहता रहे और अमल उसका बरक्स गवाही दे रहा हो, वो फ्रॉडिया है। अनकरीब फ्रॉडिया जब गवर्नमेंट के पकड़ में आता है, फिर उसकी अच्छी तरह तफ्तीश की जाती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक शख्स अपने आप को शिया कहे, और अहले सुन्नत भाई भी हमारा दर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, शिया सुन्नी का फ़र्क नहीं है, तवज्जो फरमाए, शिया का लफ्ज़ बोला जाता है, क्या जहन में नियत होती है, शिया यानी अली का शिया, यानी अली के नक्शे कदम पर चलने वाला, अली को फॉलो, अली का ग्रुप। ये उन लोगों को कहा गया था कि जब उस जमाने में जो जो अली के मुकाबले में आए, जो अली के साथ थे उनको शियान अली कहा जाता था, और जो अली के साथ नहीं थे उनको फिर किसी और का शिया कहा जाता था जिसके वो साथ थे। लेकिन बाद में ये लफ्ज़ फिर शियान अली के साथ फिक्स हो गए और उनको शिया कहा जाने लगा। वरना शिया का मतलब होता है फॉलोअर। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम जैसी हजरत हस्ती को हज़रत नूह का फॉलोअर कहा है। वह इन हज़रत नूह का तज़किरा सूरह साफ़ात में, और फिर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो तमाम आलमीन में, यानी हमेशा हमेशा। उसके बाद क्या फरमाया, इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को, अच्छे काम करने वालों को ऐसे जज़ा देते हैं। फिर फरमाया, व इन मिन शीअतिही लइब्राहीम, नूह जिस रास्ता पे चला था उसको फॉलो करने वालों में से एक कौन था, इब्राहिम। यहाँ से शिया का माना भी समझ में आ जाता है, नूह के काम, हजरत इब्राहिम के काम, कौन से काम है, देखा, शिया हो या सुन्नी हो, शिया किसे कहते हैं, अली को फॉलो करने वाला। सुन्नी जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, दर हकीकत शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं, दर हकीकत शिया सुन्नी में कोई फर्क हो ही नहीं सकता। क्यों, इसलिए कि सुन्नी सुन्नत रसूल से मंसूब है, और सुन्नत रसूल अली से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, बाब मदीनतुल इल्म है, तो बाब मदीनतुल इल्म, मदीनतुल इल्म के बारे में सबसे अच्छा बताएगा वहां पे कौन सा इल्म, अली जिनका मुरब्बी और उस्ताद, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो लिहाजा वो जो शिया कह रहे हैं वो सुन्नी है, हो ही नहीं सकता शिया सुन्नी ना हो, और हो नहीं सकता कि सुन्नी शिया ना हो। कोई अपने आप को सुन्नत रसूल का मानने वाला कहे और अली के साथ उसको प्रॉब्लम हो, ये भी सुन्नी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि सुन्नत रसूल हुब्बे अली है, हुब्बे अली है। आज मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, एड्रेस अब मुझे याद नहीं है, अहले सुन्नत की कुतुब में थी रिवायत। तो एक शख्स हैं अम्र इब्ने आस, आपने नाम सुना हुआ, कहते हैं कि मुझे एक दिन ये ख्याल गुजरा कि रसूलुल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते, तो मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह आपको जिन जिन से मोहब्बत है ना उनके नाम लें,

पक्का सुन्नी हूँ मैं जनाब, इस दफ़ा मैं मदीने में इफ्तारी करवा रहा हूँ। कहाँ से कमाया तूने वो पहले बता, मदीने में इफ्तारी, मदीने में नहीं तो कहीं और करवा ले इफ्तारी, करबला में करा ले इफ्तारी, तूने कमाया कहाँ से वो बताएगा कि तू मुजरिम है या तुझे कोई अजर मिलेगा। मैंने कल अर्ज की थी, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है, रिश्वतीन से कबूल नहीं करता, हराम खोरीन से कबूल नहीं करता, मुत्तकीन से कबूल करता है।

ये इबरतें हैं कुरान की। पहला सिपारा जो है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लगता रहे, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन ये भरा हुआ है इबरतों से। हरकतें बताई हैं बनी इसराइल की और बताया कि, लिहाजा शुरू की आयत मेरी पहली आयत है ना, ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को, मैंने क्या क्या तुम पे एहसान किए हैं। और ये जो अब नबी आया है, तुमने तो इसको मानना था, तुम इसके पहले इनकार करने वाले तुम बन गए, तुम्हें क्या हो गया? तुमसे तो ये मसलन और तवक्को थी, तुम तो इंतजार कर रहे थे, तुम्हें तो बढ़ चढ़ के इसे मानना चाहिए था, और तुम अब काफिरों को भी कह रहे हो ये वो नबी नहीं है, उनको भी इससे दूर हटा रहे हो, खुद करीब आने की तो दूर की बात, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो उसके बारे में। इबरतनाक है वो लोग कि जो सही दीन की जगह तहरीफ शुदा दीन को अपना चुके। और ये इस्लाह कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला की किताब को जैसे हक बनता है उस तरह पढ़ा जाए। इसी पहले सिपारे की आयत खत्म करता हूं बात को, अल्लदीन आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यतलूनहु हक तिलावते, इस तरह तिलावत करते हैं इस किताब की जिस तरह तिलावत करने का हक। उलाइका युमिनून बी, ये वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते। अल्लाह ने साहब बता दिया जो हक की तिलावत अदा करते हैं। और फिर हदीस है, उसका वक्त नहीं है, वैसे मैं बयान कर चुका हूँ जुम्मों के खुतबों में भी और बाज़ दुरूस में भी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत की तिलावत करने के बाद इमाम फिर वजाहत फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है हक की तिलावत, इसका क्या मतलब है, ठीक है? और उसके बाद फरमाया ये काम अल्लाह की कसम ये हक की तिलावत नहीं है, ठीक है? मैं अभी नाम नहीं लेता जिनके बारे में हमने कसम खाई है ना कि अल्लाह की कसम ये हक की तिलावत नहीं है, वो राइज है मुआशरे में। और जिन बातों का इमाम ने कहा ना ये हक की तिलावत है, वो कोई नहीं करता। इतना हमने तालीमात अहले बैत पर अमल करके दिखाया, ठीक है? अल्लाह से हमारा इख्तलाफ, रसूलुल्लाह से हमारा इख्तलाफ, अहले बैत से हमारा इख्तलाफ, फिर भी हम फिट हैं बिल्कुल, फिर भी हम पक्के मोमिन हैं, हमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। या बनी इसराइल अज़्कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफ बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें अता की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं भी तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और सिर्फ मुझ ही से डरते रहो। जिनसे खिताब हो रहा है वो मदीना के मौजूदा यहूदी हैं, रसूलुल्लाह जब हिजरत करके आ गए, ये ज़रा सिनेरियो समझ लें, खिताब इनसे हो रहा है। लेकिन जो इनको खराबियां बताई जा रही हैं वो इनके बुज़ुर्गों की खराबियां बताई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने की, क्या फरमाता है? तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। क्यों? इसलिए कि ये अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे, उनकी खराबियां इनके अंदर मौजूद थी, तो अल्लाह ने फ़र्क ही नहीं किया। तवज्जो फरमा रहे हैं कि तुम वही लोग हो जिन्होंने ये गलत मुतालबा किया मूसा से, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और आज फिर तुम वही खराबी कर रहे हो। क्या मतलब है? मेरी नेमत को याद करो, यानी मेरे एहसानों को याद करो। तुम्हें फिरौन ने गुलाम बनाया हुआ था, तुम पर इतने जुल्म करता था, मैंने कितने एहसान किए, तुम्हें कैसे उस ताकतवर और जुल्म और बर्बरियत करने वाले से तुम्हें निजात दी। इस निजात का मतलब क्या था? तुमने अल्लाह का बंदा बनना था और अल्लाह के पैगाम के आगे सर झुकाना था। अब ये जो ज़माना है, अब हमारा एक रसूल तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया, मेरे उन एहसानों का उसकी शुक्रगुजारी ये है कि इस नबी पर ईमान ले आओ, इस नबी पर ईमान ले आओ। अगर तुम ये अहद पूरा करोगे, मैंने अर्ज़ की हुई है कि ये जो मदीना आए थे ये हिजरत करके कहीं और से आए थे, चंद नस्लें पहले आखिरी रसूल के इंतज़ार करने के लिए मदीना आए थे, क्योंकि इनको बताया गया था कि आखिरी रसूल इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाएगा। अब अल्लाह कह रहा है वो तुम्हें पता है ना, इसलिए तुम आए थे, अब अपना अहद पूरा करो। अगर तुम अहद पूरा करोगे तो फिर मैं अल्लाह भी अपना अहद पूरा करूँगा। इनको पता था कि जो उस नबी पर ईमान

तुम कर सकते हो और इसकी कर सकते हो, ये कुरान ने बताया हुआ। ये है तौहीद कुरान। ये नहीं है कि अकीदा मैंने बनाया हो, फरिश्ते लेके जा रहे होंगे जहन्नम में, आगे से हमारे पीर साहब आ जाएंगे, छड़ दो ये मेरा मुरीद है, खबरदार इसको हाथ लगाया तो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरिश्तों का क्या तारुफ कराता है कुरान में, काश कुरान पढ़ा करते। यफअलून मा युअमरून, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, सूरतुत तहरीम में, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ कि उस आग पर अलैहा मलाइकतुन, उस पर ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने रखे हैं, गिलादुन जो बड़े सख्त मिजाज हैं, शिदादुन बड़े शदीद मिजाज हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो तो नाफरमानी करते ही नहीं है उस बात की जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया। तो फरिश्ते अगर किसी को जन्म लेके जा रहे होंगे अपनी मर्जी से लेके जा रहे होंगे। अगला इस आयत का ये है, वयफअलून मा युअमरून, वो तो करते ही वही है जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं लेके जा रहे होंगे, अल्लाह के हुक्म से लेके जा रहे होंगे। अल्लाह के हुक्म के बाद कौन आके कहेगा छोड़ दो इसको। ये उल्टे सीधे किस्से कहानियां ये घड़े हुए, याद रखें, आपने अगर चेक करना हो ना कि जो बता रहा है दीन ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो आप देखें उसकी बातों में कुरान और हदीस ज्यादा है या ख्वाब और किस्से कहानियां ज्यादा हैं। मेरे दादा ने ख्वाब देखा था, उन्होंने यूं उलट पलट कर दिया हर चीज, ख्वाबों से दीन नहीं बनता। मैं एक दफा यूं जा रहा था, मेरे पीछे से आवाज आई, मेरे दादा हजूर इतने वो मुकद्दस थे, वो भला गलत थे, ना कुरान ना हदीस, दादा हजूर से दीन चल रहा। ये वो है कि जब कहा जाता है उस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल किया, कहते हैं जो हमारे बाप दादा करते थे हम उस पर करें। बाप दादा हुज्जत नहीं है, ना किसी का ख्वाब हुज्जत है, अल्लाह की आयात हुज्जत है और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन हुज्जत है इस कुरान के साए में, सिंपल फार्मूला है। तो जो ज्यादा ख्वाब सुनाए उसे कहें मेहरबानी भाई ख्वाब ना सुनाएं, आप ख्वाब देखें शौक से, हमें वो बताएं जो अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, हमें वो बताएं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने फरमाया, आप अपने ख्वाब जाकर किसी और को सुनाएं, ख्वाबों में दीन नहीं है, ठीक है ना। और आप देख लेंगे जहाँ खुराफात ज़्यादा होती है ना, वहाँ कुरान और हदीस की बात कम होती है, वहाँ शेर व शायरी हो रही होती है, तखय्युलात होते हैं, बाप दादा के किस्से होते हैं, यूं मौजूदा हो गया, यूं जनाब ये हो गया, फलान हो गया, ठीक है, और लोग बेचारे सादा सादा उस पर वो बावर करके बैठे होते हैं, और ये खुराफात सुन सुन के जब जहन पक्के हो जाते हैं, फिर वो कुरान खोलते कहते हैं ओह इसमें क्या लिखा हुआ, फिर वो पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब ये कुरान में तो कुछ और लिखा हुआ है, वो कहते हो तेरी अकल है कि तू कुरान पढ़ सके, तेरी अकल है कुरान पढ़, उस कुरान को पढ़ने के लिए तो 70 उलूम पढ़ने होते हैं। चलो जी बंदा फारिग हो, पक्का गुमराही में धक्का दे दिया उसको, अल्लाह की किताब न पढ़ने के ये सारे फिर फल खाने पड़ते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, एक उनका गलत अकीदा ये था कि हम किसी को अपने बदले में दे के बच सकते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं ना वो, मसलन एक वाकया मुझे याद है, हमारे इलाके में एक वो चौधरी साहब थे, वो आ रहे थे अपनी मस्ती में, उन्होंने बंदे पर गाड़ी चढ़ा दी, बंदा मार दिया, ड्राइवर पीछे बैठा हुआ था, बंदा मार के ड्राइवर से कहते जल्दी जल्दी आगे आ जा, रात का वक्त था ताकि तू पकड़ा जाए मैं न पकड़ूं, चल मैं सारा पीछे ख्याल रख लूँगा तुझे, कुछ जब जबा छुड़वा लूँगा, क़्यामत के दिन ऐसा भी कोई नहीं होगा यार तू या मेरी जगह बैठ जाना, बल्कि तू अल्लाह ताला को बता कि इन्होंने नहीं किया था मैंने किया था। ये तो उस वक्त हैदराबाद में थे जब कराची में काम हुआ, ऐसा कोई चक्कर अल्लाह के सामने नहीं चलने वाला, कोई नाजायज़ सफारिश नहीं चलेगी, यहाँ शफात से मुराद वही जो बंदा करप्ट बंदा समझता है कि मैं तो बच जाऊँगा शफात करा के, ना कोई जुर्माना वुरमाना लिया जाएगा और ना कोई मदद की जाएगी।